0: लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए।
1: नेटो अंक्रेसर प्रेजनास में एयरबोन डॉल मालिक नई दिफाई महदों का ऐलान करेगा।
0: वेंसुएला के याराको इलाके में 25 जून 2026 को 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो जल्जलों के बाद तुर्क इमदादी इदारे मुतहर्रक हो गए हैं।
1: वेनेजुएला में जल्जले के नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफे के बाद कौमती दा अमरीका तलाश बचाव इमदाद की सरगर्मियां तेज कर रहे हैं।
0: अमरीका और खलीजी रियासतों ने हुर्मुज ट्रांजिट फीस को मुस्तरद कर दिया है।
1: इसराइल फौज ने जुबी लुबनान में हिज़्बुल्लाह के 6 अफराद को हलाक करने का दावा किया है।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: नेटो अंकरा सरकारी इजलास में अरबों डॉलर मालिक के नई दिफाई महदों का ऐलान करेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा है कि इत्तेहाद अगले माह अंकरा

0: ਰੂਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਮ ਤਾਂ 7-8 ਜੁਲਾਈ ਕੋ ਮੁਤਵੱਕੋ ਨੈਟੋ ਸਰਪਲਾਈ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਫਾਈਸਨ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਬੜਾਨੇ ਕਾ ਔਰ ਪੈਦਾ ਇਸਲਾਹੀ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣੇ ਪੇਸ਼ਰਫ ਕੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗਾ।
1: वेंसुएला के याराको इलाके में 25 जून 2026 को 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो मुतवातर जलसलों के बाद तुर्क इदारे मुतहर्रक हो गए हैं। अफात व हंगामी आलात के इदारे वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत सेहत और सदारती सिक्योरिटी उमूर के जनरल डायरेक्टरेट समेत मुतल्लिका इदारों के दरमियान कायम राबते के नतीजे में इमदादी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 38 रुकने इमदादी और तलाशो बचाओ टीम रवाना हो रही है। जनरल स्टाफ के साथ किए गए हम आहंगी के दायराकार में A400M नोयत के फौजी नकलो हमल के तैयारे के जरिए इस्तंबुल, इजमीर और देनिसली से 37 रुकनी आफात रेस्क्यू इंसानी इमदादी टीम, वजारत से सेहत के तहत काम करने वाली 6 रुकनी कौमी मेडिकल रेस्क्यू टीम, तुर्क लाले अहमर से 2 रुकनी इंसानी इमदादी अमला, 2 इन तलाशो बचाओ के कुत्ते और 3 मुकम्मल साजो सामान से लैस तलाशो रेस्क्यू गाड़ियां जलसला ज़दा इलाके में रवाना की जा रही हैं। तुर्की वजारत खारजा और तुर्की के काराकास में सफारतखाने के तआवुन से इलाके की पेशरफ्त और ज़रूरियात का करीब से जायजा लिया जा रहा है।
0: वेनेजुएला में सिलसिले के नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफे के बायस अकौमती दाम अमरीका तलाश और बचाव इमदाद की सरगर्मियाँ तेज कर रहे हैं। अकौमदार वेनेजुएला में तबाह कुन जल्जलों के बाद इंसानी इमदाद की नकल हरकत का आगाज कर दिया, जिससे शहरियों के तलाश बचाव इमदादी टीमों की तैनाती में आसानी होगी। अकौमदार के तर्जमान स्टीफन दुचारिच ने कहा है कि अकौमदार के दफ्तर बरए अमूर इंसानी के रबताकार शहरी तलाश व बचाव के कामों इमदादी टीमों की तैनाती में सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा सेक्टर जनरल टोनी गुटेरेस रुक माल की जान से तावन की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। दरअसल अमरीका जनूबी कमांड ने वजारत खारजा बैन अवी शराकत दारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाई को मरबूत करने की निगरानी के लिए एक ऑपरेशन प्लानिंग टीम कायम करने का ऐलान किया है।
1: अमरीका और खलीजी रियासतों ने हुर्मुज़ ट्रांजिट फीस को मुस्तरद कर दिया और जहाज़रानी की आज़ादी पर जोर दिया है। अमरीका और खलीजी तआवुन कौंसिल के ममालिक ने तस्वीराती अहमियत की हामिल आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का मुतालबा किया और इस बात पर जोर दिया है कि इस आबी गुजरगाह से आज़ादाना सैर व सफ़र इलाकाई और आलमी सलामती के लिए नहायत अहम है। बहरीन में मुनक़दा अमरीका खलीजी तआवुन कौंसिल वजारती इजलास के बाद जारी करदा एक मुश्तरका बयान में दोनों फरीकों ने आबनाए को दोबारा खोलने की अहमियत पर जोर दिया और कहा है कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत ट्रांजिट दाखिला और खुरूज के हक समेत आज़ाद, गैर मशरूत और गैर महदूद बहरी रास्ता इलाकाई आलमी सलामती के लिए अहमियत का हामिल है। वज़रा ने तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोके रखने के मुश्तरक हदफ का हवाला दिया और मुज़ाकरात को अमरीका और ईरान के दरमियान दुश्मनी के मजीद देरपा खात्मे की तरफ आगे बढ़ाने के अमल में रफ्तार और इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है।
0: इसराइल फौज ने जुमी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 6 अफराद को हलाक करने का दावा किया है, तहम हिज़्बुल्लाह ने इन्हें आम शहरी करार दिया है। तेल अबीब अमरीका की सासवें तय पाना जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी रखे हुए हैं। इसराइल फौज ने जुमेरात को जारी करदा बयान में दावा किया है कि हलाक होने अफराद ने हिज़्बुल्लाह के जंग जूते और जोतराशरकिया कस्बे अली अलताहर की पहाड़ी में फौज दस्तों के लिए खतरा बन रहे थे। तहम इसराइल फौज ने ना तो हलाक होने की शनाख्त जाहिर की, ना ही इस मुबैना खतरे की नोयत के बारे में कोई सबूत पेश किया है। हिज़्बुल्लाह ने जारी करदा बयान में अपनी तरफ से जंगबंदी माहदे की मुकम्मल पाबंदी का इकरार किया और जनूबी लबनान में शहरों को निशाना बनाने और इसराइल ड्रोन हमलों को जंगबंदी की वाजिया खिलाफ वर्जी करार दिया है। लबनानी ग्रोह ने अपने बयान में कहा यह हमला जिला नबतिया के कस्बे कफरमान में 2 शहरों को निशाना बनाकर किया गया। ग्रोह ने इस हमले को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइल फौज की जानब से लबनानी शहरों पर किया जाने वाला दूसरा दानिस्ता हमला करार दिया है।
1: इसराइली फौज ने दावा किया है कि वो लुबनान पर जारी कब्जे के दौरान अपने पास जंगी ब्रिगेडों को जनूबी लुबनान से वापस इसराइल मुंतकिल करना शुरू कर रही है। फौजी रेडियो ने अपने अस्करी नामा निगार दोरून कादोश के हवाले से कहा है कि फौज ने जनूबी लुबनान में अपने मुतय्यन अफवाज की तादाद कम करना और बाज़ जंगी ब्रिगेडों को इसराइल वापस बुलाना शुरू कर दिया है। नशरियाती इदारे के मुताबिक ये इकदाम लुबनान में काबिज जंगी दस्तों की तादाद कम करने और बाज़ ब्रिगेडों को तैयारी की सतह बुलंद रखने और तरबियती मरहले में शामिल करने पर मबनी एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा है। फौजी रेडियो के मुताबिक जारी जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज जनूबी लुबनान में मुख्तलिफ मुकामात पर कब्जा बरकरार रखेगी, तहम हर ब्रिगेड तकरीबन 1 माह तक कब्जे की जिम्मेदारियों से अलग रहकर तरबियत और तैयारी की सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। इसराइल ने 2 मार्च से लुबनान पर अपनी जारियत के दौरान 4,200 से ज्यादा अफराद को हलाक और 12,000 से ज्यादा को जख्मी किया है।
0: रूसी दिफाई वजारत ने कहा है कि शब में 660

0: यूक्रेन के सदर विलोदिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि सिक्योरिटी सर्विस के साथ मुशावरत के बाद उन्होंने जंग के खात्मे के लिए जा रहे रियासत पर दबाव बढ़ाने के मकसद से रूसी अहदाफ के खिलाफ 40 रोजा ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। जंग के 1584वें रोज जेलेंस्की ने बताया है कि यूक्रेनी अफवाज ने महाज से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर वाके ओफा शहर की दो आयल रिफाइनरों और महाज से 300 किलोमीटर के फासले पर वाके क्रासनदार के इलाके में एक तेल के गोदाम को भी निशाना बनाया है। क्रासनदार इलाके के ज़िला क्रांसोर आर्मीसेक के हुकाम ने भी तस्दीक की है कि पोल्तावास्काया में वाके एक तेल के गोदाम को हमले में निशाना बनाया गया है।
1: कजाकिस्तान ने यूक्रेनी हमले के बाद कुदरती गैस की पैदावार कम कर दी है। कजाकिस्तान के वज़ीर तवानाई उलान ने जुम्मे को सहाफ़ियों के साथ बातचीत में बताया, यूक्रेन की जानब से इस हफ्ते रूस के ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर किए गए ड्रोन हमले के बाद कजाकिस्तान ने काराचागानाग तेल और कुदरती गैस कंडेंसेंट फील्ड से गैस की पैदावार कम कर दी है। काराचागानाग फील्ड, जिसके हिस्सेदारों में शेवरॉन और शेल भी शामिल हैं, से हासिल करने वाली खाम गैस मोमन सरहद पार रूस के ओरेनबर्ग प्रोसेसिंग प्लांट मुंतकिल की जाती है। बुध के रोज कीव के हुकाम ने ऐलान किया था, उन्होंने यूक्रेन से तकरीबन 1700 किलोमीटर मशरक में वाक़ रूसी प्लांट को निशाना बनाया है। ओरेनबर्ग के प्लांट गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी हमले का निशाना बना था।
0: जनूबी कोरिया ने कहा है कि हम शुमाली कोरिया के खिलाफ अपने ड्रोन और इंसदादे ड्रोन सलाहियतों में इजाफा करेंगे। जनूबी कोरिया वजारत दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के खिलाफ अपने ड्रोन और इंसदादे ड्रोन सलाहियतों को तेज़ रफ्तारी से बढ़ाएगा। इस मनसूबे में 5 लाख ड्रोन ऑपरेटरों की तरबियत और अगले महाज पर तैनात यूनिटों को 10,000 ड्रोन निज़ामों की फराहमी शामिल है। बयान में मजीद कहा गया है कि फौज 2029 तक बहरी फौज, बहरिया, फजाइया और मेरीन कोर के लिए 1,10,000 ड्रोन तैयार करने का इरादा रखती है, जिसका मकसद हर फौज के मियारी साजो सामान में ड्रोन को शामिल करना है। वजीर दिफा आहन ग्योबैक ने जुमा को जारी करदा बयान में कहा है कि ड्रोन अब महदूद तादाद में यूनिटों के इस्तेमाल का सामान नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक हमागीर जंगी हथियार होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि अब फौजी ड्रोनों को दूसरे जाती हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे।
1: कैमिन यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीकती रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई जहानत इतनी तेज रफ्तारी से ताकतवर बन रही है कि अगर हुकूमतें, टेक्नोलॉजी कंपनियां, हिफाजती इकदाम मजबूत नहीं करती तो ये मुजरमों, दहशतगर्द गुरोहों, मुखालिफ रियासतों की सलाहियत में नुमाया इजाफा कर सकती है। रिपोर्ट खबरदार करती है बढ़ती सलाहियत के हमले आए निज़ाम पचीदा साइबर हमलों को सस्ता, तेज, बहुत वसी पैमाने पर बंद नीति रखने वालों के लिए काबिल रसाई बना सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन गलत मालूम, धोखादही या एहतियाती कीमियाई खतरात खुद मुख्तार हथियारों के फौजी इस्तेमाल को भी तेज कर सकते हैं। यह इंतबाह एक ऐसे वक्त में आया है जब मारूफ AI डेवलपर्स के दरमियान मुकाबले ने नई नस्ल के, जिन्हें आमतौर पर फ्रंटियर कहा जाता है, मॉडल्स पैदा किए हैं, जिसने दुनिया भर के हुकूमतों, खुफिया एजेंसियों को इस टेक्नोलॉजी के कौमी सलामती से मुतलक मुजमरात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। रवायती तौर पर सिर्फ मतन तैयार करने के लिए तैयार करता गुज़िश्ता AI निज़ामों के बरक्स आज के फ्रंटियर मॉडल्स कंप्यूटर्स कोड लिख और डिबैक कर सकते हैं, सी डाटा सेट्स का तजिया कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, डिजिटल औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, मुतअद्दिद मराहल पर मुश्तमिल वर्क फ्लो की मनसूबाबंदी कर सकते हैं और तवील मनसूबों में सार्फिन के साथ तावन कर सकते हैं। लेकिन वही सलाहियतें जो इक्तसादी साइंसी फायद का वादा करती हैं, बदनीति के लिए राह हमवार करने के रास्ते भी सहल कर बना रही हैं।
0: तुर्की ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में अमेरिका को शिकस्त दे दी है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के आखिरी मैच में तुर्की 3-2 के स्कोर से कामयाब रहा है। अमेरिका ने मैच का आगाज चारहाना तरीके से किया और आस्टन ट्रस्टे ने तीसरे मिनट में और चांद चाकर को मात देते हुए 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। तुर्क टीम ने जवाबी गोल चंद ही मिनटों बाद कर लिया जब बारिश आल्फर यलमास ने अमरीकी दिफा को चीरते हुए बाल को रियल मैड्रिड के स्टार आर्दा गुलेर के सामने तक पहुंचा दिया, जिसने 10वें मिनट में जोरदार शॉट लगाकर अपना और टीम का वर्ल्ड कप में पहला गोल किया। ये तुर्की का 2002 में एलहमान मानसिस के गोल के बाद फीफा वर्ल्ड कप में पहला गोल साबित हुआ। जब मैच बराबर हुआ तो दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बार तुर्की ने शानदार पास के तसलसल के जरिए सबकत हासिल की और कुनख्योकचू 31वें मिनट में गोल करने में कामयाब हो गए। दूसरे हाफ के आगाज में मुनज़म होकर अमेरिका ने 49वें मिनट में अपना दूसरा गोल कर दिया, जिससे स्कोर दोबारा बराबर हो गया। मैच के आखिरी लम्हात में तुर्की ने खान आईहान के गोल से फतेह अपने नाम कर ली, जो कि इसके टूर्नामेंट में वाहत और पहली जीत साबित हुई। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई।
1: پائی سامن اپ جان کی آواز میں ترکی نغمہ سماعت فرمائیے. گانے کے بول ہیں دے میں بانا یوکم.

जिसे दोनों फरीक कबूल करने पर आमादा हों और इस पर एतमाद भी करते हों। तुर्की अक्सर यही किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा है। मुज़ाकराती मेज से आगे अमन के लिए तुर्की की खिदमत सिर्फ सफारतकारी तक ही महदूद नहीं है। तुर्क फौजी एहलकार अकवाम तदा के 30 से ज़ायद अमन मिशनों में हिस्सा ले चुके हैं। बोस्निया, कोसोवा और सोमालिया इसकी नुमाया मिसालें हैं। सोमालिया में तुर्की ने सिर्फ सिक्योरिटी पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करने की बजाय अस्पताल तामीर किए, बुनियादी ढांचे के मनसूबे शुरू किए और इंसानी इमदाद को वसत दी। मोगादिशो में तुर्की के सफीर का महफूज सफारती अहाते में रहने की बजाय अवाम के दरमियान रहने को तरजीह देना इस फलसफे की अक्कासी करता है कि अमन सिर्फ जंग की अदम मौजूदगी का नाम नहीं बल्कि लोगों के साथ मौजूद रहने के असम का नाम भी है। महाजरीन के मामले में तुर्की 36 लाख से ज़ायद रजिस्टर शामियों के अलावा अफगानिस्तान, इराक और दीगर ममालिक से आने वाले लाखों अफराद की मेज़बानी के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा महाजरों को पनाह देने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। स्कूलों, अस्पतालों और मुकामी बरादरियों पर इसका भारी बोझ पड़ा और सियासी तनाव में भी इजाफा हुआ। इसके बावजूद तुर्की ने अपने दरवाजे खुले रखे। अमन पर होने वाली बहसें अमूमन जंगबंदियों और सरबराही इजलासों पर मरकूज होती हैं। हालांकि अमन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक बच्चा कमरा जमात में बैठा हो या एक महाजर को सरहद से वापस ना लौटाया जाए। इस लिहाज से तुर्की का नुक्ता नज़र 21वीं सदी में किसी भी रियासत की जानिब से किए गए सबसे बड़े इंसानी अजायम में शुमार होता है। तुर्की की अमन पॉलिसी। अमन के लिए तुर्की की खिदमत का जायजा इसके इकदाम की बुनियाद पर लिया जाना चाहिए। जब दुनिया भर में लाखों टन अनाज फंस चुका था और खुराक की कीमतें बढ़ रही थी तो तुर्की ने इस अनाज की बरामदात को मुमकिन बनाने में मदद दी। जब लाखों इन लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही तो तुर्की ने इन्हें पनाह फराहम की। जब मुतहारब फरीकों के दरमियान रबते मुनकते हो गए तो तुर्की इन चंद ममालिक में शामिल रहा जो दोनों फरीकों से बातचीत जारी रख सके। ये तमाम इकदाम अमन की जमानत नहीं देते। कोई भी मुल्क ये ताकत नहीं रखता, ताहम ये एक मुस्तकिल तरजीह की अक्कासी करते हैं और वो ये कि जब महाजराई ज्यादा आसान नजर आए तब भी मुकालमा जारी रखना, वो बोझ उठाना जिससे दूसरे ग्रेस करें और ऐसे मौके पर भी मसरूफ़ अमल रहना जब पीछे हट जाना ज्यादा आसान हो। अमन शाज़ो नादर ही इन ममालिक के जरिए कायम होता है जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। अक्सर अमन इन्हीं के जरिए फरोग पाता है जो सबसे बात करने पर आमादा रहते हैं। यही वो किरदार है जिसे तुर्की निभाने की कोशिश कर रहा है। ये खामियों से पाक नहीं लेकिन पुरस्म जरूर है। एक ऐसी दुनिया में जहां मुसाबकत, अदम एतमाद और बहरान रोज बरोज ज्यादा नुमाया होते जा रहे हैं, दुश्मनों के दरमियान फासले कम कर सकने के अहल ममालिक पहले से कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेंगे। शायद अमन के क्याम के लिए तुर्की की कोशिशों की सबसे बड़ी मीरास किसी एक मुआहदे या सरबराही इजलास में नहीं बल्कि एक कम नुमाया मगर नहायत अहम जिम्मेदारी में पोशीदा है। ये जिम्मेदारी मुखालिफ फरीकों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाले पुलों को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी है। मोहतरम सामी, आज हमने आपकी खिदमत में एमेट अमानी के टीआरटी रशियन के लिए तहरीर करदा मजमून का एक मुरतब खुलासा पेश किया। खुदा हाफिज़।